सोव्रामे व्रया मच्छापम्मा तथा ना वे ब्रह्मणि सिखा पथं समाधियामि।